तेरी वाड़ी आई वाड़ी कौना के सब तेरी वाड़ी आई कोई ना वो ना जा मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पंचम हरख दिसाख सुनावहे बंगालम मध माधव गावहे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पहात अष्ट पुत्र पहरा।

इंद्र केवल जावे दुबरा ऐसे चन प्रताप ते दिनु प्यो प्रताप तीन लोग जय जय करे रह नाम सुजाव दोहरा सकल द्वार को छाड़ कह कहो द्वार द्वार पाए गए की लाज जस गोविंद दास तुहार दोहरा राज करेगा खालसा आगे रह न कोई पार होए सब रहेंगे बच्चे सर होए होए गुरु के स्वाम लेश की कर पूरा पासार नंगा बाजे प्रति काने करंग करतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पाव सुभंग प्रभ दास सदुते दुकालं प्रणासी दयालं सदुते सदांग संगी अपंग निकुते लक्ष्मी

हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृतभान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक सोग बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण।

त्व प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गत है विभूत दारी गिद्वा मसान बास करियो करत है गुगमट बस लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है बिंद के सधयता ही जिकी वटैया देत बंदरा सदीव पाए नंग ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रभी ने एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चारी छित छौना सब दूता थारी बौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया देत गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नब के उड़ैया ताहे पंछी की बटैया देत बगुला डाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नब के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया ते तो भूत कह पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाप कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे देन चारी लिखी के सना।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करी करत है। चंद्रमा शीतल न सुर सित वत तेज इंद्र सोन राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है।

जोगिया बैरागी बन का बहु सन्यास भेष बन के दिखावई गहू बन हारी गहू बैठ लाए तारी गहू लोभ के कुमारी सो अनेक गुण गावई कहू ब्रह्मचारी कहू हाथ पैर लगावे बारी कहू दंड धारी हो के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई पंच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल कुंचर औगा दहा।

जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मच केते उनको करत भज, केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केत नभ बीज अच पच को करेंगे भज, केतक

मंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सोभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंकं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग अपेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयात्।

कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जज विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ छिद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ ज्वाल।

सभाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र जीतन कहूं शास्त्र धारण कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हूं कहूं वीर विद्या भूतं प्रवाहो कहूं छैल झाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै नासन तुट तेज अनुखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धनम ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग व्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कते जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साथ दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई गोग काव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पौनहार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व प्रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पटंत कई कर्त बांत भांतन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदब दास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्धचार कहूँ कर्त जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जन निवास कई जगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब तास पायत नांत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान भव कर्त हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भो कुटो सर्व धर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जंपह जुकण जुह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुअंग तपतापत सर्व जलेर थलंग धन उचरते।

अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देवा देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकी नमका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय दाप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुयंग जय खेत न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचयंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगेंदन कंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंड सेतज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातन पातन ज्योत चुतंग जय तातन मातन भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंपह किन्नर जच जुवंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पांद गणंग बहुभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काश अवताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली वन जास की।

चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध अधो मुख ताव तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नै।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए नराग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग ताग तक है अभूत भ्रम भेक है न तात्मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेक सेग भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेग विश्वभरण है जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व

न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है न छल है न छिद्र है न

न सीद है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नारको स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वेख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभर्म है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानी अभूम अभिज है सदा।

जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्ब ठौर रहयो बिराज ते राज राज प्रवीन जच गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसनंके बिखे बिराजे सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी लभी

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सवे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर।

रंगे तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध जमके भूखण धमके अथ जमके फुंग फनंग जय जय होशी मैं का दुर्मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून खिते दाम निदमंगण दुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकार खण पुष्ट प्रहर खण दुष्ट मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दा थे दामनी प्रहासन सुछव निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते।

अस्पताल जलन चाचर चमकारन चिच्छुर हारन धूम धुंकारन द्रप मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मृज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय उसी में काजुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगुरु घमंकण सहस्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्ना है अगमता है एक वृते जय जय होशिये मासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भृष्ट

संकटे निवारण धमुदारण तेज प्रकर्षण तुंद तपे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय होसी सहस्र प्रकर्षण आद नीला गाद भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठा।

बारज बिलोजन प्रतन विमोचन सोज बिशोचन कौज कसे धाम निप्रहा से सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन आदन आद का दुर्धन घंट का बिराजे रुण जुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक बाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दच्छे मंथन रिछे सब न भजे रोरण जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृत्ते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट

दामनी प्रकाश है ज्योत प्रकाश है दुर्बल दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रकार खंड बितल तले अष्टायद बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गुड़ गते जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन आद नाद अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेव कर संत प्रत

दुर्मर्दन साध प्रत छन दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ गही ली ज्योत जति ली तुंद मते अष्टायुध चमकण सत्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुकी दमंके भागव पंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय होशिय मैघा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो दारण एक फटे पापान बिहंडन दोष प्रचंडन खंड

परेख कहे बास तास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चयन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग जे अंछिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंतन दुरंत जे नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाए जय पैर पार दी नान दोख दहता उदार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र क्रिया द्वार कई वेद व्याद ब्रह्मानंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबारक नीमन गारे पच पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपारे पुकत है जल मैथल

अखंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम के प्रीत संभार है। पार न पाए सके बद महाबद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज विलोकत राज द्रोह रोहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव कपे अहं बेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भ्रमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर आत्मा आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो किन श्री।

लोकन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद महापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देवी न स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगे है अच्छ है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डूलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पद महापत लय है रोगंते अशोकंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलाव गाव तौ तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप संभोहन भेटन पावे और की बात कहा कह तू सौ सौ पेट ही के बट बीच बचावे जच भुजंग सोदानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का सपताल सातर जच भुजंग सफे सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को ने तही ने तह भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारग से सब हूँ मिल गायो वेद गतेव न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मैं जे को अमित तोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान भेद नृपान सब बजहारे वेद न पाए सके वन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे याद अनाद अगाध अपेगत वैग जप्यो तिने कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया मा सतरण के साल है। दान के दिवैया मा मान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया।

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्याव गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जुग जुग साधे पौन साधना किते बांधे यार बके यार भी यारध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पछ मक्के।

है सगंग थान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदी न साध दीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हद की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चिट की चिंगार पहले ही सुनियत है। कित इंद्र द्वार कितने ब्रह्मा मुख चार कितने कृष्ण अवतार कितने राम कहियत है। कितने सस राशि कितने सूरज प्रकाश कितने मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कित महादीन कित व्यास प्रवीण कित कुमेर कुलीन कित जच कहियत है।

राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंस निश सिहारो मही रसि हो सनवाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद निके रही झूल के जंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत ते हरि रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूरा सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हल्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी जंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के बृतंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप अकमाऊ सर्व ठौर मैं बिराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र

तेति बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेति तुमरा लखान जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज सीत जकीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट चिते उठवत तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे सुधजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जाण पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह हैं रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैलेहो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अलदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख नाथ सह ब्यापत कोई अडल।

को कह चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने।

धरो अब रीज के देहो वह हमको जहाँ बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया।

जप गुरु नाम नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुरु नाम सतगुर से रत्या दरगह पाई ठा कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे जग मह।

के बढ़ जावे दोहरा ऐसे तन प्रताप ते दिन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय करे दोहरा सगल द्वार को छाट के ग्रह तुहारो पाएंगे की लाज अस।

पूर्ण गुरु अवतार दगमग ज्योत विराज रही श्री अपचल नगर उपा सतखंड के दरडोर।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।
1: बोले सो नेहा, संगत नूं बेनती है कि बच्चों का हौसला भी वधदा है जेकर आपां जकारे का जवाब देईए। ते जितनी भी संगत बैठी है उच्ची आवाज दे विच जी सारिआं ने सांझ पाउणी है जी। बोले सो नेहा, तो बड़े ही प्यार दे नाल।

भय विच कनकडै बेगार, भय विच धरती दबी भार, भय विच इंद फिरै सिर भार, भय विच राजा धर्म दुवार, भय विच सूरज भय विच चंद्र बहु करोड़ी चलत न अंत, भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भय विच आडाने आकाश, भय विच जोत महाबल सूर, भय विच आवे जावे पूर, सगलिया पौ लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक।